ने मेरे समेत अपने ते लेनी गल। महात्मा बुद्ध कहंदे कोई गाहक बने ते सौदा देया ना, धक्के नाल की करा हक सतनाम। तू सौ घर गया, सारिया ने तेनू क्या भी मंदिर किस वास्ते जाने, फिर जिस वास्ते जाते ओ ही मिलना है ना। दाते नू मंगदा ही कोई कोई है। मांगना मांगण नीका हर जस, गुर ते मांगना अरदास करो। साड़ी खाश ओ सच्चे दाते नाल जुड़ जाए। तू विसरे दुख बहुता लगे, तू ना विसरी आखो सतना। एक तिल प्यारा विसरे रोग वड्डा मन माए। गुरु नानक साहब प्रसन्न होए, कहण लगे शुक्र है इहदा गाह की कोई विरला होंदा। बाबा बुढ़ा जी 8-9 साल की उम्र सी, प्रशादा ही लिया सी ना, ते सतगुरु ने रसना नू ला के कहा सी तृप्त हो गए हां। उन्हें आख्या बाबा आत्मा क्यों तृप्त हो गए? जी क्या सतना। बाबा जी हैरान रह गए, कहते हुए सारी दुनियावी गल्लां करदे, तू अध्यात्मक गल। उम्र ते छोटी है पर गल्लां बुढ़िया वर्गियां। बाबा बुढ़ा जी बने। जितनिया भी बीबियां वीर बैठे हो, मेरी भी अरदास करो, अपनी भी करो। अध्यात्मक मंजिल दे विच भी किथे पिछे हां, अगली पौड़ी भी अरदास करया करो, इधर भी खोज रख्या करो।

जन नानक को हर बख्श रहे हो, जन नानक को हर बख्श रहे हो। हमारी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह, हम क्यों कर जबे आनिया हर तुम मत अगम अगाह। हर देहो प्रभु मत गुर सतगुर के पग पा, सत संगत हर मेल प्रभ हम पापी संगत रहा। जन नानक तो हर बख्श ले हो, हर तुटे मेल मिला। हर कृपा कर सुन बेनती, हर कृपा कर सुन बेनती, हम पापी किरम तर।

अमरदास अंगद पहचाना, अमरदास रामदास कहायो, साधन लखा मूर नहीं पायो, भिन्न भिन्न सब हो पर जाना, एक रूप किन हो पहचाना, जिन जाना तिन ही सिद्ध पाई, तिन समझे सिद्ध हाथ ना नानक अंगद को बप धरा, धर्म प्रचुर इह जग मूं करा, अमरदास पुन नाम कहायो, जन दीप ते दीप जगायो, जादू वरदान समा को आवा।

जनता मन ध्यान धरे फिर सकल जग तब हमको को पावे आत्म प्रकाश को वेद वाणी सहित ब्रंच जस गावे जन को शिव मन गहना तजात कविलास को जानको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटाजूट पेख किए फिर उदास को सो तिन सतगुर सुख भाए।

गुरु साजी दिवाजी सत्संग जीओ राग श्री राग ताड़ी सेवा विच पढ़न की सेवा कर रहे हैं। श्री राग का जो चलन है वह दो सुरां ते निर्धारित है, एक जिसनों असं ऋषभ कहने सा तो बाद दूसरा स्वर रे है उसनों ऋषभ कहा जाता है, इसका प्रधान सुर है, और पंचम जिसनों पा कहने सारे गामा पा पंचवा सुर जो है वह इसका वजीर सुर है। इन दोनों सुरां के सुमेल के नाल श्री राग का जो स्वरूप कायम होता है, जिस तरह

पूरे जो पड़ताल है जिसनु पड़ताल गुरु मातंत्र किया जाता है उसका भाव है कि ताल नु बदल के गायन करना जिवें हुण पहला जो रहाओ है वो ध्रुपद ताल च आया है हुण ताल बदल गया इस नु असीं दीप चंदी कहने हैं 14 सुर मात्र का ताल है ताल बदल गया है इस नु पड़ताल कहांगे और श्री गुरु महाराज जी ने पड़ताल भी बड़े शब्द उच्चारण किए ने तो आप जरा इसका भी रस थोड़ा जिहा लाओ।

शब्द है वो गवैया नु महाराज का हुक्म है। वो कहते ने तदरदानी दानी तुम दानी तल तुम दिरना। ये ग्रंथ जो है सर्वलो प्रकाश की बाणी है। धागड़ी धर्म दृढ़तांग दागड़ी दिम दिरना, दागड़ी वृत्ते वांग दागड़ी तोम तोम तोम दिरना, दागड़ी दे दे ताल कागड़ी कोम किरना। ये शायद जी ने तराना गाया तो इसका मतलब है दागड़ी दे दे ताल कागड़ी कोम किरना। इसका अर्थ है कि कुम किरना तुसी पलटे लगाने सरगमा लगा और ताना लगा कुम किरना नाल दे दे ताल दागड़ी दे दे ताल के तुसी ताना लगाते हुए ताल का ना ख्याल भुल जाए। ताना भी लगाओ और ताल दे अंदर लगाओ, ताल ते स्वर का मिलाप करके कीर्तन करना। बाणी नू राग विच ताल विच गायन करना इसनू कीर्तन कहेंगे। जे राग ते ताल कढ दियो बाणी पढ़ी जाओ वो कीर्तन नहीं हैगा, पाठ हैगा। तो पाठ जिहड़ा है वो राग तो बिना बाणी पढ़नी पाठ है, राग और ताल दे विच गायन करना जिहड़ा है वो कीर्तन। तो गुरु साहब कहिंदे दागड़ी दे दे ताल, ताल दे विच तुसी घुम किरना नाल पलटे लगाओ सरगमा करो और ताना लगाओ। उसका स्वरूप सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जो फरमा रहे हैं।

सरवण करो। भाई बलबीर सिंह जी ने रागी जते पासों शब्द बिसर गई, सब तात पर आई, जब ते साध संगत मोहे पाई।

श्रवण करो। पहला चार ताल है, फिर तीन ताल है, फिर दो ताल है, फिर एक ताल है।

एक ताल दो ताल हूं तीन ताल श्रवण कर लो नहीं जी दो ताल हो गया हूं तीन ताल जो कब कीनो सो भल मान्यो इस मत साधु ते पाई सब में रव रे राव योग

एक ताल, दो ताल, तीन ताल, चार ताल और चार ही राग, माल कौश, चंद्र कौश, सूर्य कौश, जोग कौश, चार ही पंक्तियां बिसर गई सब तात्पराई। जब दिशा संग में पाई, ना को बैरी ना ही बिगाना, सगल संग हमको बने आई। जो प्रभ की नो सो भल मान्यो, इस मत साधु पे पाई, सब में रव रहे प्रभ ही कह, देख देख नानक दिखाई। आप जी ने श्रवण किया है तराना, साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज फरमा रहे ने, यह तराना जेड़ा है अनकौमां जिहड़ियां ने गैर सिखां नूं चुका के रख देने वाली बात है। मैं इत्थे बहुत वड्डे वड्डे गंधर्व गायक इकट्ठे हुए सी, कहण लगे जी सिखां नूं तां राग गाउणा ही नहीं आउंदा, ऐसा साडे सामने ना कहा, कहिंदे असल वार तां ला लैंदे आ पर राग गाउणा नहीं आउंदा। मैं कहा जी राग साडे सतगुरां ने गाए आ, कहिंदे गाए ते तुसीं सुनाओ। इह तराना सुनाया और सारे हाथ जोड़ के कहंदे जी इह सानूं लिखा दिओ तराना, असीं तां इस तरह की बंदिश कदी सुनी नहीं। मैं कह जी ये फिर साहब गुरु गोबिंद सिंह की दात है, उन्होंने मत्था टेको तो उन्होंने को सरवण करो, उन्होंने को दात प्राप्त करो। सारे ने फिर बड़े अदब नाल साहब गुरु गोबिंद सिंह के चरणों में नमस्कार की। इतने दुर्गाना मंदिर की बात है, सारे आखो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब वाले तो तराना सरवण करना। साहब सच्चे पातशाह आप गाते रहे और आप इन्होंने इस तरह के 20 तराने श्री सरवणों प्रकाश ग्रंथ विद्वान ने कभी आप दर्शन करना।

आलू होए मेरा स्वामी किस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावे जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिख की।

नामदेव भगती करने वास्ते मंदिर विच आ गए। धर्म दे ठेकेदारा ने चुक के बाहर मारे। पंडता ने आखिया तू नीवी जात विच एक शुद्ध ते मंदिर विच किवें आके बह गए। कहिंदे ने मोढ़े ते कमली पाई मंदिर दे पिछवाड़े जाके बह गए। परमात्मा अगे रोस कीता, हे परमात्मा।

हे परमात्मा बस एक गल का ख्याल करी मैनू तू ना विसारी मैं ते तेरे अगे बेनती ही कर सकदा रोस कर रहे ने अकाल पुरख नाल हे परमात्मा जे तेरा नाम ही नहीं सी जप सकदा तेरा सिमरन नहीं सी कर सकदा तेरे घर ही नहीं मैं आ सकदा सी मैनू कानू इस जात विच भेजे किसी उची जात विच भेज दें तेरा नाम ते जपदा तेरा सिमरन ते करदा नीवी जात वाले नू नाम जपन का भी हुक्म नहीं ख्याल करियो इस समाज की हालत सी इस समाज के अंदर मंदिर विचों कटे हुए नामदेव नू धन गुरु अर्जन साहब ने आवाज मारी आ नामदेव तू मेरे को आ की होया तेनू मंदिर विचों कढ़िया गया मैं तेनू हर मंदिर विच बिठा दिना हाले के जोहरा फिर गया पर उन्हां जात अवमानिया दे मन फिर भी नहीं फिरे उथे दे उथे खलोते हंकारियां निंदकां पिट दे नाम देव मुख लाया हंकारियां वाल जात अवमानिया वाल पिट हो गई नाम देव नूं मुख सामने विखाया परमात्मा ने लेकिन उन्हां दे दिमाग उथे दे उथे खड़े उसे तरह दे उसे तरह ही हन कैसी कमाल दी गल है जी नामदेव हर मंदिर विच उदों भी बैठे सन नामदेव हर मंदिर विच अज भी बैठे हुए है किसी सिख की ताकत कोई आखे कि नामदेव जी तुसी परा हो जाओ मैं गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकना नहीं कोई कह सकता क्योंकि यह मान बख्शिया गुरु अर्जन साहब ने ते गुरु का दिता कोई मान खो नहीं सकता कोई लै नहीं सकता कैसी गल है उस वेले समाज विच ए हालत सी लेकिन धन गुरु अर्जन साहब ने अपने नाल बिठा ले अड़दा मिनिस्टर नाल कुर्सी बर्दाश्त नहीं करता वो कहना मैं ही बस उत्ते होवां मेरे नाल ना कोई बोवे पर धन गुरु अर्जन साहब ने ते अपने नाल कईयां नूं बिठाया एक रूहानी थाल तैयार कीता धन श्री गुरु ग्रंथ साहब दा रूहानी रूह दी खुराक 36 प्रकार का जिदे अंदर भोजन है जिन छा के मनुख तृप्त हो सकता है हालांकि नामदेव ने आवाज केड़ी दिती है

उसने बड़े तरले लए। भोजन छड़ के ना जाओ, आज खुशी का दिन है, मेरे घर लड़का पैदा होया। कहन लगी कुछ भी होवे, असां भोजन नहीं छकना।

प्रेमी बड़ा दुखी होया। कहने लगा मेरे घर बच्चे ने जन्म ले, ब्राह्मणा ने प्रसादा नहीं छके, कहंदे ने तेरा घर सूतक वाला। ए दुखी बैठा सी, किसी ने कहा दुखी ना हो, इत्थे तन गुरु नानक।

से फिटते गुरु बाबे फिट के से फिटे गुर अंगद कीते कूड़े गुर तीजी पीढ़ी विचारिया क्या हाथ के ना विचारे गुर चौ

हमारी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जपह आणिया हर तुम वड अगम आगा।

हमारी जेबा एक प्रभु जेबा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाहे जेबा एक कवन गुण कही है तेरे गुण बहुते मैं एक न जाने कवन गुण कही है जेबा एक तू समरथ वड़ा मेरी मत थोरी राम मेरी मत थोरी राम हम अज्ञान अल्प मत थोरी तू समरथ वड़ा

जन नानक को हर बख्श रहे हो, जन नानक को हर बख्श रहे हो। हमारी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह, हम क्यों कर जपे आने हर तुम मद अगम अगाह। हर देहो प्रभु मत गुर सतगुर के पग पाह, सत संगत हर मेल प्रभ हम पापी संगत रहा। जन नानक को हर बख्श ले हो, हर तुटे मेल मिला हर कृपा।

पुस्तकें सारे मिलके पढ़िए और जतन करिए जो गुरु ने सानू पूरने पाके दसे हैं कि प्यार किया गुरु ने साडे नाल असी भी जतन करिए उन्हें प्यार करने उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। भाई शाह भाई गुरदास जी ने गुरसिख का गुरसिख नाल कितना प्यार होना चाहिए किवें दस्या आख्या सिर उच्चा नीवे चरण सिर पैरी पांदे। एक बड़ा सुंदर सवाल है। सिर उच्चा है सब तो नीवे पैर हैं भाई साहब कहेंगे ना फिर पैरों वाल सिर क्यों जाता उन्हां कदमों की की खूबी की है सारिया पैरों पर तो नहीं सिर झुक जाता उच्चारण करो श्री सिर उच्चा नीवे चरण सिर पैरी पांदे मूंह अखी नक कन हथ दे पार उचलदे सारे चिन्ह उपर हैं मूंह अखी नक कन हथ दे पार उचलदे हजूर कहते हैं सब चिन्ह छड पूजियन कदमों की पूजा क्यों होती है वो कौन कर्म कमाने वो कदम केड़ा कर्म करते हैं जिन्हों कदमों से बदो बदी सिर झुक जाता है उच्चारण करो श्री ता अगलियां टुकां विच भाई साहब जवाब दे रहे हैं। आप कहते हैं भाई वो कदम तां तनता दे योग हैं गुर सरणी साध संगती ने चल चल जा गुरु के सिख दे कदम सत संगत वल जान चंगे रहते अमृत वेले उठ के गुरु का सिख इशनान करता है ते फिर मुख तो जप रहा है श्री किधर चले हो जी मैं गुरुद्वारे चले किदी सोहनी सुगंधी है कितनी सोहनी शोभ है क्योंकि पहली पौड़ी ही गुरसिखी की अमृत वेले जागना है। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने आकी पौजल बनी हुई सी 10 लाख का फेरा सी इतिहास में पढ़ो जदों आनंदपुर साहब का किला छड़िया ते एडे वड्डे पौजल विच भी उन्होंने अमृत वेला बिना कीर्तन दे नहीं बिताया। जदों अमृत वेले का समा होया भाई दया सिंह साडा अमल टुट गया गरीब नवाज समझ नहीं आई अच्छा आशा दी वार दे कीर्तन का समा जा रहा है ते उथे भी बह के आशा दी वार का कीर्तन होया हुण असी अपने अंदर छाती पाईए भई केड़ा सुख है जो वाहिगुरु ने सानू नहीं दिता ते फिर इन्हें सुख प्राप्त करके भी असी उहदा शुकराना नहीं करते। उन्होंने तो सानू पूरने पाके दसे हन कि इतने पौजल विच भी गुरु के सिख ने अपना नितनेम त्यागना नहीं ते असी एडिया सुखां विच रह के भी जे उहदा शुकराना नहीं करते तो फिर सिख कदे होए उच्चारण करो श्री वाहे। इसलिए आओ भाई भाई साहब गुरदास जी पूरने पा रहे हैं कि अमृत वेले उठ के इशनान करके जो गुरु के दरबार जाते हैं भाई गुरदास जी कहते हैं उन्होंने कह दियो जेड़े जोड़े उन्हें पहने हैं वह उतार देन पता नहीं किस चमड़े के हैं आ मेरे तन के चमड़े के जोड़े बनवा के उन्होंने पहना दो उच्चारण करो श्री भाई गुर शरणी साध संगति नित चल चल जाते बतन पर पुकार कर पार वसाते मेरी खलो मौजरे गुरसिखांडा। तो भाई इतनी निम्रता गुरु घर विच है परस पर आपस विच प्यार करिए जदों भी मिलिए फतेह बुलाइए वाहिगुरु जी का हजूर का वचन है जेड़ा पहला फतेह बुलावेगा मेरा मुख उस वल होगा उच्चारण करो श्री भाई होए एकत्र मिलो मेरे भाई दुबदा दूर करो लिवलाए हर नामे की होवो जोरी गुरमुख बैठो सफा विषय आज जुड़े बैठे हो हजूर कह रहे हैं सही सुंदर सोहने साध संगत जो बहने गुरु नूं कोई सुंदर लगते हैं चंगे लगते हैं जो सत्संगत बह के जपते हैं श्री वाह। तो धन गुरु ग्रंथ साहब जी का
ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਇਹ ਦੀਦਾਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹ ਅਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਬਰਕਤਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉੱਥੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਲਖਮੀ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵਈ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ, ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ, ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਵਧਦੀ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਰਥ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਲਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀ ਆ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਥ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਆਪ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਦ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇਗੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਤ ਸੰਗਤ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਸ ਕਰੀਏ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ। ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੌਰ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।

0: कहते हैं मैं परम गति पाले ही सब तो उच्ची आत्मक अवस्था अकाल पुरख वाहिगुरु दे मिलाप दी पाले ही है। भक्त रविदास जी दस दिहन के मेनू के साथ संगत दे द्वारा ही प्राप्त हुई, बाकी दे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच वी इस आईडिया नू इस तरह सपोर्ट करते हैं, इस दे नाल सहमत हैं, इस दे नाल इकमिक हैं, अते ताकीद करते हैं कि इंसान ए जिज्ञासु ए सीकर जे तू उस अकाल पुरख वाहिगुरु नू ढूंढना मिलना चाहना है जो कि तेरी जिंदगी का निशाना है तो सात संगत तो अलावा होर दूसरा कोई रस्ता नहीं। महाराज जी बाणी च इस तरह आखते हैं कहते हैं
1: संत जना के संग मिल बारे
0: कमले इधर उधर ना फिर

संगत दे विच आत्मक तौर ते अंदरले जीवन वल्लों रूहानी जीवन वल्लों स्पिरिचुअल लाइफ वल्लों आत्मक जीवन वल्लों जो बिल्कुल खत्म हो चुका है मरिया होया इंसान है कहिंदे साधु दे टच दे द्वारा साधु दी जो एनर्जी दी फील्ड है उस दे विच आंदियां ही कहिंदे ओ इंसान भी द्वारा जिंदा हो जांदा है उस दे विच भी रूहानी जीवन दी शुरुआत हो जांदी है। साध के संग सदा प्रफुल्ल साधु दे संगत दे विच हमेशा इंसान दी जो सोल है ओ डिवेलप करदी है ओ ब्लूम करदी है। इस करके गुरु बाबा जी भगत रविदास जी दे इस आइडिया नू बाणी दे राही सपोर्ट करदे हन उस दे नाल सहमत हन कि गुरुआं दी भगती एक ही विचार है ओ ए है कि अकाल पुरख वाहिगुरु जो प्राणा दा नाथ है ओ सबना दा प्यारा है अगर उसनू मिलना है तो एक ही ढंग है ओ है साध संगत प्रेम नाल।

बहुत कमाल की गल बाबा जी बाणी च आखते हैं कि जो साधुओं का संग है वो सिर्फ इत्थे ही काम नहीं आता, किसी होर दुनिया च भी काम आता। बाणी का प्रमाण सुनो, कहते हैं

बहुत प्यारे वचन हैं। ये शब्द इतना इतनी परफॉर्मनेस दे नाल भरिया पिया है कि असी इसनू अपनी जिंदगी अगर कमा लईए, इसनू वरत लईए, तो साडा जीवन भगत रविदास जी की तरह बदल सकता है। भगत रविदास जी कहते हैं, फिर मैं की कीता, जोई जोई जोरियो सोई सोई फट। जो भी अपने अंदर सुभाव जोड़े हुए सन, सुभाव पकाए हुए सन, इन्वेस्टेड हैबिट्स सन, कहिंदे उसनू मैं सारे नू एक कचड़ा समझ के पाड़ दिता। जोई जोई जोरियो, असी कई दफा एक दफा किसे नाल नाराज हुंदे हां, फिर उसनू असी अपने अंदर जोड़ लेने हां, उस नाराजगी नू फिर सारी उम्र रखते हैं। किसी ने अगर सानू कोई बुरा शब्द किसी वेले कह दिता है, वह फिर सानू सारी जिंदगी याद रहिंदा है। जो भी उस परसन नू असी देखते हाँ, उस रेफरेंस दे विचों देखते हैं, उसे रेफरेंस दे विचों देखते हैं। मेरे नाल किसी ने बुरा किया है, उसनू असी भुला नहीं सकते। कहिंदे जोई जोई जो रहे हो, अगर 10 साल पहला किसी इंसान ने कोई गलत काम किया है, वह सुधर भी जाए, तो साडिया निगाहों के जदों असी उसनू मिलांगे, देखांगे, तो असी यह कहांगे सानू पता है 10 साल पहला किदां दा हुंदा सी। दिस इज अवर नॉर्मल बिहेवियर। 10-15 साल पहला अगर किसी इंसान का जीवन किसी होर किस्म का सी, जो कि बहुता एक्सेप्टेबल नहीं सी, लेकिन वो इंसान अपना जीवन बदल लेता है। उसने तो जीवन बदल लिया है, लेकिन लोगों ने ओपीनियन नहीं बदली अपनी। लोग उसनू यही कहते हैं कि जानते हैं असं इसनू 10 साल पहला की करता हूं। उसनू क्रेडिट दो, उसनू शाबाश दो कि इसने अपना जीवन 10 साल कितने का कितने ले आता है, बदल लिया है, ना कि तुसी उसे नू ही देखना है। बाणी दे विच एक साडी जो अवस्था है, साडी जो आदत है, उसके प्रति बहुत खूबसूरत लाइन महाराज ने दर्ज की है। कहते हैं, माखी चंदन पर हरे जह बिगंग तह जाए, माखी चंदन पर हरे जह बिगंग तह जाए। जड़ी मक्खी है वह चंदन ते नहीं बैठती, उन्हू त्याग दिंदी है। जह बिगंग जिथे गंदगी है उथे जाके बैठती, उथे जाके बैठती। तो असी भी अपने जीवन दे विच किसी की खूबसूरती नू, किसी के शुभ गुण नू जदों देखते हां, तो नाल दी नाल कोई उहदा कोई ना कोई अवगुण जां कोई उसका पिछला कर्म जरूर देखने की कोशिश करते हैं। भगत जी कहते हैं, मेरिया निगाहां च मैं अपने अंदरों जो भी जोड़िया सी, कहते सब पाड़ के रख दिता। अगर किसी नाल नहीं सी बनती तो उसनू जाके आप बुला ले। कोई अगर मैनू मैला लगता सी तो उसनू आख्या गले लगा के, भाई तू ही मैला नहीं, मैं तेतों भी खुद ज्यादा मैला। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाटो। जेड़े गलत सुभा पक चुके सन, आलस का सुभा गलत है, निंदा का सुभा गलत है, चुगली का सुभा गलत है, होमे का सुभा गलत है, उच्चा बोलन का सुभा गलत है, कौड़ा बोलन का सुभा गलत है, ये सारे पक्के हुए सन। कहते वो सारे द सारे मैं, दिस वॉज द सैकेंड इफेक्ट ऑफ द साध संगत। कहते मैं इस सारे द सारे फौरन पाड़ सकते, डिले नहीं की। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाट्यो, झूठे बंज उठ ही गई हाट्यो। वह कहते जी झूठ की दुकान खोली उसी मैं, वो उठ ही गई है, खत्म ही हो गई। अखीरली लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही अर्थपूर्ण है, जिस दे विच भगत रविदास जी आखते हैं। पहला उसनों सुनो, फिर उसका असी अर्थ करांगे।